सतरे संगत में कदे न गए हरि भजन मेरा कदे न गए ओ सतरे संगत में कदे न गए हरि भजन मेरा ऊपर वाले जोयो जमारो।